0: तुम चांद देख लेना हम नजर आएंगे, निहाल टोरो एंड ऑफ कोर्स अनकॉन मुखर्जी इन दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गीत व्हाट वी कॉल इन हिंदी तुम चांद देख लेना हम नजर आ जाएंगे. इफ यू लुक एट द मून यू विल फाइंड मी, सो beautiful, so beautifully written there. This is Geetanjali, and of course you're tuned into the airwaves of Lotus FM. After the break, it's a time for the Hindi Vakyansh, so stay tuned right here on Lotus FM, and this is Geetanjali.
1: Share the experience, Lotus FM.
0: स्वागत है सभी का गीतांजलि के हिंदी कार्यक्रम में. अब समय आ गया है हम एक वाक्यांश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें. तो आज का वाक्यांश है, अगर आपकी दिशा सही हो तो फिर चिंता की बात नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहे. वन मोर टाइम, द वाक्यांश फॉर टुडे इज, अगर आपकी दिशा सही हो तो फिर चिंता की बात नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहे. तो दोस्तों, यह वाक्य जीवन में सही दिशा के महत्व को बता रहा है. अगर आपका रास्ता सही हो तो डरने या चिंता करने वाली बात नहीं होती है. सफलता तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन सही दिशा में मेहनत जरूर फल देती है. सबसे जरूरी है कि आप रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहें. धैर्य और निरंतर प्रयास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं. सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? दिस सेज, अगर आपकी दिशा सही हो, इफ योर डायरेक्शन इज राइट, तो फिर चिंता की बात ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको बस इतना ही करना है कि आप चलते रहें. विदाउट वरिंग यू जस्ट कैरी ऑन. सो दिस कोट रिमाइंड्स अस दैट क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड, एंड व्हेन यू आर श्योर दैट योर पाथ इज राइट, यू डोंट हैव अ सिंगल आउंस ऑफ डाउट, एंड देन द प्रोग्रेस दैट कम्स देयर आफ्टर मे बी स्लो, बट consistency will keep you moving closer and closer, inching your way towards the goal. So instead of worrying about results, focus on continuing your journey with confidence. Trust the direction you've chosen and keep going forward. Success will follow in time. Well, this was the Vakyansh for today. This was the phrase, the Hindi phrase. I hope you took a leaf or two from here. And yes, if you have, you know, listened to it very keenly, and if you want to send me a voice note of one or two words, or even in your own words, but in Hindi, as to what it meant, now is the time. 071-613-7803. This is Geetanjali.
2: Spinners on Gear Prize Drops gives you the chance to win a share of an epic 2.5 million rand in cash and tech gadgets. Enjoy a spinning spectacular and unwrap exciting wonders where fortunes fall from the sky, and you could claim amazing prizes with every round. Simply bet 2 rand or more on selected pragmatic play slots Mondays, Tuesdays and Thursdays and enjoy sweet success. Hollywood Bets, it's more fun to spin with us.
3: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
4: Mzansi, your chance is finally coming home with Sizekhaya. We're bringing back Lotto live draws. Experience the thrill live with real people, real wins and real-time excitement. And the next number is 7. 7 is for heaven. Tune in every Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday at 9 p.m. Feel it, live it, it's here. Players must be 18 years or older. Play responsibly. The National Lottery is officially operated by Sizekhaya.

आप सभी का स्वागत है हिंदी कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतांजलि। हर सोमवार इस कार्यक्रम को हम 6 से 7 बजे आपके लिए लेके आते हैं हमारे लोटस एफएम के अंतर तरंग द्वारा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की। आज का दिन थोड़ा खास भी है और थोड़ा एहसासों से भरा हुआ भी है, बिकॉज टुडे वी रिमेम्बर वन हाफ ऑफ Bollywood's most iconic music duos, Lakshmikant ji. A name zikr aate hi dil mein kitni yaadein aa jaati hain aur kitni hi meethi dhunein bhi jaag uthti hain. To pehle hum sunte hain ek aisi hi iconic geet jiska naam hai Chahunga Main Tujhe, Mohammad Rafi sahab ki awaaz mein.

डूब जाने वाले गीत जिसको कहते हैं, ये एक उदाहरण था उस गीत के लिए, चाहूंगा मैं तुझे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यानी जिनको बुलाते थे एलपी, लेकिन आज लक्ष्मीकांत जी को हम याद कर रहे हैं। 1960 से लेकर 1990s तक इन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत पर राज किया था, एंड यू नो ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स, क्रिएटिंग मेलोडीज दैट आर ट्रूली टाइमलेस। एंड इवन टू दिस डे आई मस्ट से, यू नो, व्हेन यू जस्ट लिसन टू दीज काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, यू जस्ट सिट बैक एंड यू जस्ट, यू नो, गो इन टू दैट एरा। इट्स सच अ क्लासिक थ्रोबैक। जरा सोचिए, वो दौर जब रेडियो पर, थिएटर में, शादी ब्याह में, हर जगह जो गीत गूंजते थे, उनके पीछे एक ही नाम था और वो था एलपी का। एंड ऑफ कोर्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीकांत जी, यू नो, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत, यू जस्ट कांट टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत जी, यू हैव टू टॉक अबाउट प्यारेलाल जी एज वेल। सो LP is the jodi that, you know, comes to your mind all at once. So, Lakshmikant ji ka safar aasan nahi tha, lekin mushkil halaton mein janam lekar unhone apne sapnon ko apni mehnat se sajaya. And music became not just his passion, but it became his identity. And then came the turning point. Film, पारस मनी के साथ उनका जो टर्निंग पॉइंट था वो आ गया, और फ्रॉम देयर देयर वाज नो लुकिंग बैक। हिट आफ्टर हिट, मेलोडी आफ्टर मेलोडी, एंड दैट्स हाउ वी गॉट चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। एंड यू लिसन टू इट जस्ट नाउ ऑन द एयरवेव्स ऑफ लोटस एफएम। वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू लक्ष्मीकांत जी ऑफ द एलपी जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी। यू नाउ लिसन टू येट अनदर ब्यूटिफुल मेलोडी, एंड दिस इज इन द वॉइस ऑफ लता जी। सुनो सजना पपी है ने, एंड वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू लक्ष्मीकांत जी थ्रू दीज आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑन लोटस एफएम ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी।

दोस्तों, आपका स्वागत है गीतांजलि के हिंदी कार्यक्रम में, जो हम आपके लिए लेके आते हैं अपने लोटस एफएम के अंतर तरंग द्वारा. वेलकम बैक वंस अगेन टू गीतांजलि. ऑफ कोर्स, एज आई वेलकम यू बैक, इट्स अ टाइम टू राउंड ऑफ द शो. एंड दोस्तों, इसी मधुर सुरों की अंजलि के साथ हम विदा लेते हैं गीतांजलि से. अब जुड़े रहिए टॉकेट 7 विद शास्त्रानी गेसर के साथ, और जहां बातें होंगी दिल की और हालातों की, और हर घंटे की ताजा खबरें आपके लिए लेके आएंगे सरेशन. रात गहराएगी तो साथ निभाएगी नाइट कैफे विद केशव दास. मैं हूं आपकी अर्चना श्रीधर. फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए. आप सभी के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी कल अपने तेलुगु भाषा कार्यक्रम में, जिसका नाम है संगीत निलेमु, और कल होगा कुछ खास. तो आप सभी के साथ जुड़े रहने की आशा करती हूँ कल शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक. ऑफ कोर्स, एंड विद दैट बीइंग सेड, दोस्तों, आपकी अर्चना श्रीधर आपसे विदा ले रही है. नमस्कार और शुभ रात्रि.

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।